0: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टरका,
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
1: तो सुनो,
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: इंटीरियर
0: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके, दैट्स इट।

0: turmeric to honey and ginger. It's always Tropical Sun Herbal Teas. Tropical Sun, the flavors of the world.
1: ZTVHD पर देखिए तुमसे तुम तक।
2: अगर तुम्हारे साथ अपनी दुनिया सजाने में जो मजा आता है ना, और किसी चीज में नहीं आता।
3: ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई।
4: मीरा ये क्या हो गया तुम्हें? मीरा तुम उठ क्यों नहीं रही? आंखें खोलो मीरा।
5: क्या होगी मीरा की अगली साजिश?
4: अनु तुम प्लीज जल्दी आ जाओ।
3: क्या हुआ यश भैया?
4: मीरा आंखें नहीं खोल रही।
5: अनु और आर्यवर्धन क्या मीरा के हर झूठ और साजिश को बेनकाब कर पाएंगे? देखिए तुमसे तुम तक आज शाम 6 बजे ZTVHD पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
6: My mum started cooking with Khanam Ki in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using Khanam Ki for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth, satisfying taste. Ah! Now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
7: Mom, is the dinner ready? As I can smell the Khanam Ki.
6: Khanam Ki, the legacy lives on.
8: Khanam Ki, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
6: Herald, a new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald winter catalogue today. Call 0208-507-7900 or download their winter catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and delivery businesses. Herald Packaging, available at food services, cash and carries and with disposable suppliers to trade, visit heraldpackaging.com.
9: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour with Jamin Foods.
4: नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा with नमकीन, mango ball, chicky और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India. Yeah.

0: For the creamiest, dreamiest coconut milk, it's always Tropical Sun. Tropical Sun, the flavors of the world.
1: ZTVHD पर देखिए तुमसे तुम तक
2: ना तुम्हारे साथ अपनी दुनिया सजाने में जो मजा आता है ना और किसी चीज में नहीं आता।
3: ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई।
4: मीरा ये क्या हो गया तुम्हें? मीरा तुम उठ क्यों नहीं रही? आंखें खोलो मीरा।
5: क्या होगी मीरा की अगली साजिश?
4: अनु तुम प्लीज जल्दी आ जाओ।
3: क्या हुआ यश भैया?
4: मीरा आंखें नहीं खोल रही।
5: अनु और आर्यवर्धन क्या मीरा के हर झूठ और साजिश को बेनकाब कर पाएंगे? देखिए तुमसे तुम तक आज शाम 6 बजे ZTVHD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
6: Shop Soho Road, Birmingham brings to you the hugely anticipated Malabar Golden Diamonds 10th Birmingham Premier Diwali Mela 2026. Catch live on stage the legendary Kulwinder Villa and many more acts. Also with funfair rides, traditional market and food stalls. It's all happening on the world famous Soho Road, Birmingham on Sunday 25th of October from 12 noon and is a free event for the whole family. Main stage hosted by Sunrise Radio, our official radio partner, and brought to you by Soho Road Business Improvement District and Malabar Golden Diamonds and Sony Entertainment Television as official TV partner. We'll see you there. Soho Road, Sunday 25th October from 12 p.m. Start to

0: Tickets available now on Ticketmaster and AXS in association with Berico Food Distribution Limited and PRC Direct. Don't miss your chance to witness the voice that is Jubin Nautiyal, radio partner Sunrise Radio.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरी
2: देवियों और सज्जनों चिट्ठी आई है यूके के 2 लाख प्लस एनआरआई के लिए घबराइए नहीं इनकम टैक्स की नहीं अस्पोरा की है लेकिन अगर इनकम टैक्स की होती तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था अगर आप अभी भी इंडिया का सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आज ही अस्पोरा एनआरआई अकाउंट खोलिए पहली रेमिटेंस पर £50 का डिजिटल गोल्ड पाइए सर्च अस्पोरा टैक्स इन्फॉर्मेशन नोटिस
3: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल्ड बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है
4: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ
3: जी बिल्कुल
5: शबनम इसका जवाब गोल्ड बैंक है
4: हाँ मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है गोल्ड बैंक
3: बिल्कुल सही जवाब अब आखिरी सवाल गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है
4: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ
3: बिल्कुल आप ऑडियंस पूछ ले सकती है
6: गोल्ड बैंक
4: मैं ऑडियंस के साथ हूँ गोल्ड बैंक
3: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह बिल्कुल सही जवाब आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
7: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल 0203 500 1111 goldbank.co.uk
8: शबनम साही ऑन सनराइज विद सोनी टीवी What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV.
0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
9: Good morning, it's 10:17. You're on Sunrise Radio with me, Shabnam Sahi. It gives me great pleasure to say a warm welcome to the legendary Hansraj Hansji, jo ki yahan pe UK mein kai concerts karne aaye hain. He's already had a few packed out fabulously successful gigs and sabse pehle main apne listeners ko ye yaad dila dun that Hansraj Hansji is going to be performing live

0: at the Sofitel Hotel here in London Heathrow this Saturday on the 10th of October. There are a few tickets remaining. Book them immediately at eventbrite.co.uk. I'd like to say a warm welcome to Hansraj Hansji. Welcome to Sunrise.
1: Thank you, ji. Sunrise ka, Tony ji ka, Shabnam ji, aapka specially bahut dhanwad. Thank you. Aapne phir yaad farmaya aur Mr. Haq ka shukr guzar hoon. Sanjay ji ka bahut shukr guzar hoon. Ye mere bhai hain, dost hain. Business kisi aur logon ke saath bhi ye karte hain. बहुत सारे इवेंट का, लेकिन मेरे से तो मोहब्बत का रिश्ता है, तो कभी कभी बुला लेते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ.
0: आप जितने बार यूके में शो करने आते हैं, आपके जो फैंस हैं ना, जो ऑल अक्रॉस द यूके, दे वेट फॉर यू टू कम एंड परफॉर्म लाइव. ये सवाल शायद मैंने आपसे पिछली बार भी किया था कि हाउ डू यू डिसाइड ऑन अ सेट लिस्ट. क्या आप महफिल के रुख को देख कर फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैं क्या गाऊंगा, या फिर
1: आर्टिस्ट वही है जो अपने दिल की चिंता ना करे, लोगों के लिए गाए, लोगों को लगे ये मेरे दिल की बात कर रहा है
0: जी.
1: और कौन नहीं चाहता मेरा दिल चोरी हो, हालांकि मेरा दिल चोरी नहीं कोई करता, मैं कोशिश भी करूं, लेकिन हेल्प आउट मैं करता हूं लोगों की, लिसनर्स की. उनके काम के गाने हैं, जैसे दिल चोरी साडा हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं आपा दोवें रुस बैठे तो मनाऊ कौन वे. तो अगर कोई ब्रेकअप हो जाए खुदा ना खास्ता
0: जी,
1: तो कहते हैं कि दिल टूटे टूटे हो गया.
0: बिल्कुल. मतलब हर सिनारियो के लिए आपके पास
1: गीत और गाना जो है वो वही है जो लोगों के लिए हो, ऑडियंस के लिए हो, हर शख्स को लगे कि ये मेरी बात कर रहा है, मेरे दिल की बात कर रहा है
0: जी. आप इतने सालों से गा रहे हैं, अभी भी आपने अपने फैंस के दिलों में एक इतनी प्यारी सी जगह बना के रखी है, उसका राज क्या है?
1: उसका राज यही है कि ना सलीका है आरजू का, ना बंदगी ही कोई बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है.
0: वाह.
1: इतने साल कोई बर्दाश्त करे, इतने साल फिर भी सारे शो सोल्ड आउट हों, तो ये उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे उस्ताद जी का और लोगों की दुआओं का और आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हर बार बहुत उत्साह से आते हैं. मैं देखता हूँ उनके चेहरे के तासर कि उनको कुछ नया भी चाहिए होता है, फिर मैं नया भी पेश कर देता हूँ, फिर कुछ फरमाइशें होती हैं. आई थिंक हंसराज हंस का मतलब है फुल पैकेज.
0: जी बिल्कुल.
1: गजल सुननी, गजल सुनो, सूफी सुनना, सूफी सुनो, एंड पे डांसिंग सॉन्ग तो होते ही हैं, क्योंकि ढोल में हम पंजाबियों की जान फंसी हुई है.
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा. यू नो, आपके फैंस दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज एज यू सेड, यू आर अ फुल पैकेज.
1: वर्सेटाइल यानी होना, ये भी अपने आप में खुशनसीबी है
0: जी.
1: वरना एक ही टाइप का ज्यादातर लोग गाते हैं, जहाँ डांसिंग गाएंगे, जहाँ कोई और गजल गायक गाएगा. लेकिन आपकी दुआ से मैं जस्टिफाई भी करने की कोशिश करता हूँ. ये नहीं कि मैं कहूँगा मैं आई एम परफेक्शनिस्ट, पर मैं कोशिश करता हूँ, अगर गजल गाऊँ तो लगे कि ये गजल गायक, सूफी गाऊँ तो लगे कि ये रूहानियत है इसमें, मालिक का कोई जिक्र हो रहा है, तो अगर जिक्र हो रहा है तो कहीं जुड़ भी जाए, कनेक्ट भी हो जाए. अगर डांसिंग है तो फिर लगे कि जिदा पंजाबी जी कहते धूड़ा पट दे.
0: जी बिल्कुल. आपने बिल्कुल सही कहा, परफेक्शन तो जो है, वी ऑल एस्पायर टू परफेक्शन, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है, ही इज ऑलवेज अ स्टूडेंट.
1: कोशिश करते रहना चाहिए जी. सुर और लय में परफेक्ट बंदा तो जितने भी बड़े लोगों को मैंने सुना है, उन्होंने समुन्द्र से ही तशबीह दी है संगीत की. तो अगर इतने बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मैं तो अपने आप को एक अदना सा म्यूजिक का सीकर कह लें, स्टूडेंट कह लें, बस प्रचारक कह लें. और इसके जरिए ये है कि पूरी दुनिया में लव एंड पीस का मैसेज देने में मैं कामयाब हूँ.
0: जी बिल्कुल.
1: बॉर्डर्स पे जाके भी, हर कंट्री में जाके भी मेरा मिशन होता है मोहब्बत का पैगाम दूँ, क्योंकि तकलीफ होती है एहसासमंद आदमी को जब अननेसेसरली लोग जंगों के जरिए मारे जाते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं क्यों. भाई भाई का दुश्मन है, मजहब मजहब का, मुल्क मुल्क का दुश्मन बना हुआ है. ये पता नहीं क्यों, कब इंसान को ये समझ आएगी कि मालिक ने हमें पैराडाइज बना के दिया था, हम और प्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं, वहां जिंदगी ढूंढ रहे हैं, जो दिया है मालिक ने उसको दोजख बना रहे हैं, नरक बना रहे हैं आपस में लड़ झगड़ के.
0: Music is a universal language that binds people, that brings people together. We all feel the same emotions when the songs appeal to our heart.
1: Entertainment तो होती है
0: जी बिल्कुल.
1: लेकिन अगर इस बहाने से आप कोई अच्छा मैसेज दे दें सोसाइटी को, कम से कम फिर आप गिल्टी नहीं है कि मैंने ड्यूटी नहीं की
0: जी.
1: वरना पैसे कमाए, तालियां उगरा ली, सीटियां बजा ली, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैसेज ऑफ लव एंड पीस इसके थ्रू जरूर दूं।
0: विच इज द रीजन योर फैंस लव यू सो मच। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी हंसराज हंस जी। ही इज परफॉर्मिंग लाइव एट द सोफिटल होटल इन लंदन हीथ्रो दिस सैटरडे ऑन द 10th ऑफ अक्टूबर। प्लीज गेट योर टिकट्स नाउ एट eventbrite.co.uk। हंसराज हंस जी, आई कैन आस्क योर फैंस, अर्ज योर फैंस टू गो एंड अटेंड द कॉन्सर्ट बिकॉज दे नो हाउ स्पेशल दिस इज गोइंग टू बी। लेकिन आप अपनी बोली में इन योर ओन ब्यूटिफुल स्टाइल व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर काउंटलेस फैंस जो आपको इस वक्त सनराइज पर लाइव सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
1: मैं यही कहूंगा कि हमेशा आप खुश रहो, और कहते हैं ना कि अगर फूलों को जुबान होती तो वो भी सात सरों की मौसीकी में बात करते। जिंदगी अगर सुखद करनी है, पीसफुल करनी है, तो संगीत से जुड़े रहो। संगीत से जुड़ोगे तो क्रिएटर से जुड़ोगे, क्रिएटर से जुड़ोगे तो पीसफुली ये जिंदगी का सफर। वी आर ट्रैवलर, वी आर नॉट रेजिडेंट हियर। इसमें ट्रैवलिंग थोड़ी एंजॉयफुली हो जाएगी, वरना फिर वो है ना कि आदत ही बना ली है तूने तो मनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना।
0: वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
1: वेलकम शबनम जी, एक बार फिर मैं आपका और सनराइज का शुक्रगुजार हूं, और संजय भैया का जो हमें सबको सपोर्ट करते हैं, हक सच बरहक का भी
0: जी। थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी सक्सेसफुल टूर, और सनराइज में दोबारा आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: सनराइज पे आए बिना तो गुजारा ही नहीं है। मैं तो अवतार पाजी के टाइम का हूँ, जब लाइसेंस भी नहीं मिला था तब से मैं लगा हुआ हूँ सनराइज। ये कोई कंसर्न है मेरा, भाई साहब के साथ बहुत प्यार था, आगे टोनी ने भी ऐसा ही दिया, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरे भाई की ये निशानी है सनराइज और टोनी।
0: ये रिश्ता ऐसा ही कायम रहे, मे दिस रिलेशनशिप कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लरिश। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।
2: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
3: Hello UK, Goro Big Boss is back, aur is baar ghar walon ko milega ek nahi two chance. Big Boss only on Colors.
4: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 p.m. only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: A warm and wonderful human being, a phenomenal performer. Hansraj Hans joined by his sons Navraj Hans and Yuvraj Hans for this one. The winner, this hour. Enjoy.

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, Stone Age से लेकर New Age तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour with Jamin Foods.
4: नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
5: Mr. Khan's Sher o Shayari arrives just in time. आप अर्ज करते हैं, हमारी वफादारी अभी समझ नहीं आएगी उन्हें. हमारी वफादारी अभी समझ नहीं आएगी उन्हें. अभी गुरूर में बैठे हैं वो कि उनके चाहने वाले बहुत हैं. दूसरा शेर है, नींद में भी गिरते हैं आंखों से आंसू. ओ डियर, नींद में भी गिरते हैं आंखों से आंसू, ख्वाबों में भी तुम मेरा हाथ छोड़ देते हो. ओ डियर डियर डियर.

0: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
1: Hello, UK Golo, Big Boss is back. Aur is baar gharwalon ko milega ek nahi, two chance. Big Boss only on Colors.
2: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
3: Right, let's play our second game. We're playing Guess the Film, all right? I'm going to play you a snippet from a very popular film. Just tell me what the film is.
4: Pet ki sasa hai aapka, bhai saab.
5: Ji.
4: Pet ki sasa hai aapka. Daant padi thi na us din.
5: Haan, ab theek hai. Thank you.
6: Sumit ka sangi.
4: Bhai saab, main nahi sa kyun lag raha hai ki aap log mara pichha kar rahe ho.
5: Nahi, nahi, aisi baat nahi.
4: अच्छा ये बता दो किसका कर रहे हो मेरा के इसका
3: 07925-700-272 do you recognize that little bit of dialogue listen again
4: पेट किस ऐसा है आपका भाई साहब
5: जी
4: पेट किस ऐसा है आपका दांत पड़ी थी ना उस दिन
5: हाँ ठीक है थैंक यू
6: सुमित संगी
4: भाई साहब मन नहीं सा क्यों लग रहा है कि आप लोग मारा पीछा कर रहे हो
5: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं
4: अच्छा ये बता दो किसका कर रहे हो मेरा के इसका
7: द हिट ऑफ द आवर विद जेमिन फूड्स नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो बॉल चिक्की और बहुत कुछ

0: हिट ऑफ द आवर विद जेमिन फूड्स। नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ। जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
1: Will anybody get it? No answers at the moment, not even one. Who's going to be my hero of the hour? Come on, you can do it. You know the song. I guarantee you, you know the song. I'll give you some clues.

0: visit starters.co.uk
1: or call 0208-900-2323.
2: Pepe's Piri Piri presents The Showstoppers, featuring the top three winners of Indian Idol Season 16. The very beautiful Jyotirmay Nayak, soulful Tanishq Shukla, and the very entertaining Manraj Veer. After winning your hearts on TV, they are now coming to UK to perform live for the very first time this November. You can watch them perform in Birmingham on Friday, 20th November at the Warehouse in the Aston Villa Stadium, on Saturday, 21st November at the Live Centre Events, Bradford, and on Sunday, 22nd November at British Airways Arc, situated in Olympia, London, in West London. Tickets available via Ticketmaster and Videorama. Grab your tickets now. This show is powered by Dairy Valley and produced by Grace Entertainment and VM Law Solicitors. Radio Partner, Sunrise Radio.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली, ओपन ट्यूजडे टू संडे।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: देवियों और सज्जनों, चिट्ठी आई है यूके के 2 लाख प्लस एनआरआईज के लिए। घबराइए नहीं, इनकम टैक्स की नहीं, अस्पोरा की है। लेकिन अगर इनकम टैक्स की होती तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। अगर आप अभी भी इंडिया का सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आज ही अस्पोरा एनआरआई अकाउंट खोलिए। पहली रेमिटेंस पर £50 का डिजिटल गोल्ड पाइए। सर्च अस्पोरा टैक्स इन्फॉर्मेशन नोटिस।
6: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's has over 260 stores nationwide. There's one near you.
7: Sunrise Radio. Happy birthday to TV executive producer and TV talent show judge, Simon Cowell. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate together with a cake from the Cake Box.
8: Birthday greetings from Cake Box. This Halloween, Cake Box is staying up late. Join Cake Box after dark, 29th and 30th October. We're open until 9 p.m. with treats, prizes, activities and free samples. Plus, kids get a free Halloween brownie when you spend £10. Cake Box after dark. Halloween gets sweeter after dark. Terms and conditions apply. While stocks last. Participating stores only.
6: This is Sunrise, the UK's biggest. Asian. Mix.

0: find the best deal for flights on Air India, Emirates, BA, Virgin, BIA and Sri Lankan Airline only with TravelHubWorld.com.
1: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
0: My mum started cooking with khanam ghi in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghi for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
3: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghi.
0: Khanam Ghee, the legacy lives on.
4: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
5: London, get ready. Raga Events presents Bade Miyan Chote Miyan live in concert. Experience the legendary Bollywood icon Udit Narayan performing live alongside the dynamic Aditya Narayan. One epic night of legendary hits, electric energy and pure Bollywood magic. Sunday, December 20th, 2026 at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets are selling fast. Grab yours now at Ticketmaster, AXS or visit raga.events.
6: And now, the weather.
7: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle and a chilly wind blowing from the west, north, east and south.
8: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
9: Deviyon aur sajjano, chitthi aayi hai. UK ke 2 lakh plus NRIs ke liye. घबराइए नहीं, इनकम टैक्स की नहीं, अस्पोरा की है। लेकिन अगर इनकम टैक्स की होती तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। अगर आप अभी भी इंडिया का सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आज ही अस्पोरा NRI अकाउंट खोलिए। पहली रेमिटेंस पर £50 का डिजिटल गोल्ड पाइए। सर्च अस्पोरा टैक्स इन्फॉर्मेशन नोटिस।
10: Little's biggest ever wooden toy event is nearly here. Turning playtime into building sites, street food markets and record-breaking racetracks. Get 10% off the entire range with Little Plus, with prices starting from £7.19. Little, more to value. 18 plus GB only while stocks last. Terms apply. See little.co.uk/LPTV. Offer from the 8th to the 14th of October 2026.
11: Dosto, aap sabhi ka swagat hai Khelo aur Jeeto ke mega episode mein. बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूं आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
12: जी पाजी।
11: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
12: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूंगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूंगा।
11: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
13: हेलो
12: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
13: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नु पता है यार, गोल्ड बैंक।
12: सर जी, आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
11: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय,
4: visit the Gold Bank, 215 the Broadway, Southall, 0203 500 1111. goldbank.co.uk.
0: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. That's 0208 518 9100. Bringing India closer.
14: Coming up, that random Bollywood fact, but first, Urvashi Urvashi from Humse Hai Muqabla. You listen to Nans on the UK's Biggest Asia Mix.

0: Das Bahani from Das coming your way. Keep it locked.
1: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208 574 8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
2: Dad, where have you been?
3: I went to supermarket, snack shack, chai da si, big cricket match today on TV and movie afterwards.
2: We had popcorn and crisps, Dad.
3: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with chatwal milia.
2: Uncle Chatwal?
3: Nahin, chatwal de namkeen range, plain bhujia, aloo bhujia, khatta meetha, neembu masala, navratan mix and moong dal. Oye, main full selection chak le aaya.
1: Chatwal's mazedar spicy Indian snacks. Our award-winning great taste of 2026. Six winners, a brand by SOP International. Now available at major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets. Enjoy with family and friends.
4: This month, Mera Boiler is offering a pre-booking sale with a £350 discount on all Bosch boilers. Get a fully fitted 25 kilowatt Bosch boiler for just £1,875. Complete with a 7-year guarantee. Call 020 8150 2025 or visit MeraBoiler.com now. T's and C's apply.
5: Beautyfect, the sell-out portable luxury beauty box for flawless makeup, now brings you a luxury range of beauty accessories, including the new matte gold makeup brush collection, Beautyfect blender for airbrush application, and a range of beauty products to suit everyone, including a 100% mulberry silk eye mask, crystal nail file for manicured perfection, and stylish beauty storage solutions. Save time, look good, feel great. Always look your best with Beautyfect. Visit beautyfect.com or Harrods.
6: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert. On the 12th of December, Mattioli Arena, Leicester. 13th of December, OVO Arena, Wembley. Tickets available now on Ticketmaster and AXS. In association with Berico Food Distribution Limited and PRC Direct. Don't miss your chance to witness the voice that is Jubin Nautiyal. Radio partner, Sunrise Radio.
7: देवियों और सज्जनों, चिट्ठी आई है यूके के 2 लाख प्लस एनआरआईज के लिए। घबराइए नहीं, इनकम टैक्स की नहीं, अस्पोरा की है। लेकिन अगर इनकम टैक्स की होती तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। अगर आप अभी भी इंडिया का सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आज ही अस्पोरा एनआरआई अकाउंट खोलिए। पहली रेमिटेंस पर £50 का डिजिटल गोल्ड पाइए। सर्च अस्पोरा टैक्स इन्फॉर्मेशन नोटिस।
8: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
9: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
8: जी बिल्कुल।
10: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
9: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
8: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
9: सर, मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
8: बिल्कुल, आप ऑडियंस पूछ ले सकती है।
11: गोल्ड बैंक।
9: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
8: यहाँ देखिए, 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
1: विजिट द गोल्ड बैंक, 215 द ब्रॉडवे, साउथॉल, 0203 500 1111, goldbank.co.uk।